जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

0: होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई। पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोस मनाई। चुग लतीए जाके जिथे लेखां चोग खंडाई, चुग लतीए जाके जिथे लेखां चोग खंडाई। जा सौरे कर दिए ले जा लड़ा परी विदाई, जा सौरे कर दिए ले जा लड़ा परी विदाई। धन्यवाद जी।
1: हरजीत रूबी तो बाद हुण मैं जिला जलंधर दी तहसील फलौर दे इतिहासिक पिंड दसांझ कलां दे शायर राम प्रकाश टोनी जी नूं सदा देण जा रहा हां कि आन ते अपनी रचना जिहड़ी आ साडे स्रोतियां दे नाल सांझी करन। ते ओह लिखदे ने जिंदा जिस दी जमीर है। राम प्रकाश टोनी जी तुहाडा स्वागत है।
2: सत्कारयोग साथियो, मेरी रचना है जी जिंदा जिस दी जमीर है। जिंदा जिस दी जमीर है, आदमी ओ अमीर है। कीते जिसने बड़े कपड़े, कीते जिसने बड़े कपड़े, बनिया ओ कल वजीर है, बनिया ओ कल वजीर है। अमीर सी सभ्याचार साडा, अमीर सी सभ्याचार साडा, गायका कीता लीरो लीर है, गायका कीता लीरो लीर है। पहला पाले घोगड़ बिले, पहला पाले घोगड़ बिले, हुण सीने मारदा तीर है, हुण सीने मारदा तीर है। दुध त सारा डेरी जावे, दुध त सारा डेरी जावे, ताइयों काना शरीर है, ताइयों काना शरीर है। सुधर जांदे बड़े बड़े, सुधर जांदे बड़े बड़े, डंडा लुच्चियां दा पीर है, डंडा लुच्चियां दा पीर है। घर घर रांझे जमदे ने, घर घर रांझे जमदे ने, पिटदी फिरदी हीर है, पिटदी फिरदी हीर है। कातल दे गल फुल पैंदे, कातल दे गल फुल पैंदे, सच दे अखी नीर है, सच दे अखी नीर है। असी इको मां दे जाए हाँ, असी इको मां दे जाए हाँ, बिच मजमा पाई लकीर है, बिच मजमा पाई लकीर है। टोनी जो हक्कां ले लड़दा है, टोनी जो हक्कां ले लड़दा है, दसांझ ओ बहादुर वीर है, दसांझ ओ बहादुर वीर है। धन्यवाद जी।
1: राम प्रकाश टोनी तो बाद हुण मैं कपूरथला बस दी साडी शायरा रजनी वालिया नूं कामे फल दे विच सदा देण जा रहे हां। रजनी वालिया जी अपनी कविता विच लिखदे ने मिट्टी नाल मुहब्बत हो गई। आओ प्यारे श्रोते देखिए ओ किवें मिट्टी नाल मुहब्बत करदे ने। रजनी वालिया जी तुहाडा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघास स्वागत है।
3: नमस्कार जी, मैं रजनी वालिया कपूरथला तो अपनी रचना लैके हाजिर हां मिट्टी।

इस मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।

जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, रिश्ते नाते

पुट ते पिछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए लेखा लिखिया मेट न सकदा हो लेखा लिखिया मेट न सकदा की होना कल वेख न सकदा ताही हिरदा दुखड़े चलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए नैणे हंजू सच लिखदा ए तुर दरगाहे लेखा देना तख्त हिजरे दा हलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए।

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

0: वाह
1: लास्ट रह गई लाइन बाबे
0: जी,
1: तमा मैं थोड़ा ही लेना चाहता सी पर ज्यादा लै गया कोई गल नहीं चलो
2: बहुत बहुत खूब
1: देख के।

पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। तुम संग जीवन ऐसे कटेगा जैसे धूप संग छाया, हाय कुर्बान जाऊं। ऐसा आंवली हसीना दिल मेरा तूने छीना, मदहोश मंजिलों पर तूने सिखाया जीना।

0: ना, एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। जुल्फ है जो मुंह पे
1: लहू ठंडा ठंडा आप
0: डालो तो दिन में शाम कर और बेनकाब निकलो तो कत्लेआम कर दो। जुल्फे जो मुंह पे डालो तो दिन में शाम कर दो और

जिसको मिलेगा तेरे प्यार का साया, आए कुर्बान जाऊं। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, आए कुर्बान जाऊं। गर झूम के चलो तुम, ओ जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गर झूम के चलो तुम, ओ जान जिंदगानी, पत्थर का भी कलेजा हो जाए पानी पानी। गोरे

तू अपने बेले आबाद रखी, जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होण तो पहला मैनू देके थोड़ा जहर जावी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया हाँ दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे राधा डोड़ा रेहानी निकल गया हाँ दारोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हनेरे नू कर

0: दिन रात मेहनता कर दे हां मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत करदे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसीं हुणे कुलवंत सिंह सैदो जी दी कविता जिंदगी असी मजदूर तेरे सुन के हटे हो, ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवे उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लैके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसीं पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसी नूं दिल तो ही जा सकता है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकता है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकता, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। पलिकानू हंजुआ दे नल पिगोया करेंगी तू। करी करी के मैनू याद, रोया करेंगी तू। हाय करी करी के मैनू याद, बदलां दे विच बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा,

0: लर्न करना है, होर ज्यादा पढ़ना है,
1: अच्छा
0: तां
1: जी,
0: ओह उचेरी विद्या लई भी अप्लाई कर सकदे हैं, जिद्दां कि ओह पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज आ जांदे हैं साडे
1: अच्छा जी,
0: ए, हांजी उहनां लई भी अप्लाई कर सकदा है, बच्चे बच्चे अप्लाई कर सकदे ने, ओह
1: इस
0: भी
1: कोर्स दे
0: दोनों।
1: आधार पर, आईटीआई दे कोर्स दे आधार पर, फिर पॉलिटेक्निक जिहड़ा डिप्लोमा है उहदे विच उहनूं
0: हांजी
1: कोई छूट मिलदी है पर सालां दी उहदी,
0: नहीं
1: जां ओनें
0: ओ
1: टाइम दा ही करना
0: नहीं
1: पैंदा है?
0: नहीं नहीं ओदे विच ओनू नहीं छूट मिलेगी, ओ तां ओनू कंप्लीट 2 साल दा ही करना पऊगा डिप्लोमा
1: अच्छा जी,
0: ते, पर जेकर ओ डिप्लोमा तो बाद बीटेक कर सकदा है, जिद्दां
1: अच्छा
0: कि
1: जी,
0: अभी सीधे तौर ते अगर कोई विद्यार्थी बीटेक करना चाह रहा है तो ओदे लिए ओनू नॉन मेडिकल लेना पऊगा,
1: हाँ
0: ते
1: जी,
0: उस
1: हाँ
0: तो बाद
1: जी,
0: जेईई मेंस एडवांस वो टेस्ट देने पैणगे, फिर ओदी बीटेक च एडमिशन हुंदी है। बट जे कोई बच्चा आईटीआई दे थ्रू भी बीटेक च जाना चाहुंदा है तां भी वो जा सकदा है। इहदे नाल
1: अच्छा
0: की
1: जी,
0: होगा कि आईटीआई दा 2 साल दा कोर्स करन तो बाद ओह डिप्लोमा करूगा पॉलीटेक्निक दा 2 साल दा, ओह तो बाद ओदी जिहड़ी लेटरल एंट्री हो जूगी बीटेक सेकंड ईयर दे विच।
1: अच्छा जी,
0: हांजी वो जेडे भी उन्हें ट्रेड दे विच कीती हुई है,
1: हाँ
0: मान लो
1: जी,
0: ने इलेक्ट्रिशियन च कीती है, तां उसनू उस अकॉर्डिंगली जेड़ा भी ओदा स्ट्रीम बनदा होगा ओनू बीटेक च एडमिशन मिल जाएगी, ओदे लिए
1: हाँ
0: ओनू
1: ठीक है,
0: जेईई मेंस ते एडवांस देने दी जरूरत नहीं पौगी।
1: ओके ओके। अच्छा,
0: हांजी
1: जिहड़े ये कोर्स आपां गल शुरू की पहला भी कीती सी भी, इन्हां नूं प्राइवेट खेत्र दे विच नौकरियां मिलदियां जां सरकारी?
0: हांजी बिल्कुल, इन्हें बहुत ज्यादा स्कोप है आईटीआई दा,
1: हाँ जी,
0: जेड़े बच्चे आईटीआई होल्डर्स ने उन्हां दा बड़ा स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर च भी हैगा,
1: हाँ जी,
0: गवर्नमेंट सेक्टर दे विच भी हैगा, ते मोर ओवर ओहो अपना खुद दा बिजनेस भी बना सकदे ने,
1: अच्छा
0: ते
1: जी,
0: इस तो इलावा विदेशां दे विच भी रोजगार काफी हैगा है आईटीआई स्टूडेंट्स दे लई।
1: अच्छा जी,
0: ते जदों आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे आं तां जिदां ही मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जेड़ा
1: हाँ
0: साडा
1: जी,
0: मैन्युफैक्चरिंग दे विच जेड़ियां आ गईयां चीजां, ओ सारे जिन्नियां भी कंपनीज आ गईयां साडियां ओदे विच बच्चे जाके जिदां टेक्सटाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर, ठीक है, एनर्जी, इदां दे काफी प्राइवेट सेक्टर दे विच जेड़ियां कंपनीज काम कर रही ने उहनां दे विच काफी डिमांड हुंदी है, वेल्डर दी,
1: अच्छा जी,
0: इलेक्ट्रिशियंस दी, रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनर जेड़े मैकेनिक्स हैं उहनां दी बहुत ज्यादा डिमांडिंग ए ट्रेड्स ने,
1: अच्छा जी,
0: जिन्हां दी आईटीआई दे प्राइवेट सेक्टर च बड़ी डिमांड रहंदी है,
1: ठीक है,
0: ते ए कंप्लीटली इंटरव्यू बेसिस ते हुंदा है, ते प्लस उहनां दी जेड़ी हैंड स्किल्स ने, उहनां दा जिन्ना हैंड स्किल्स होगा, उहनां नूं एक्सपीरियंस होगा किन्ना, तां उस बेसिस ते उहनां नूं नौकरी मिल जाती है।
1: तुसीं गल विदेशां दी कीती है, विदेशां दे
0: हांजी
1: विच अग्गे पढ़न लई मौके मिलदे हैं जां उहनां नूं अग्गे इस कोर्स दे आधार ते उत्थे जाके कम्म मिल जांदा है?
0: नहीं, कम मिल जांदा बेशक उहनां नूं, रोजगार मिलदा विदेशां दे विच,
1: अच्छा जी,
0: जिवें असीं जदों गल करदे आं जिहड़े आईटीआई होल्डर्स ने इहनां दा मिडल ईस्ट कंट्रीज जिन्हां नूं असीं गल्फ कंट्रीज भी बोल दिंदे आं उहनां दे विच बड़ी डिमांड है, जिद्दां सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया,
1: हाँ
0: बहरीन
1: जी,
0: हो गया, कतार हो गया, ओमान, इदां दे जिहड़े गल्फ कंट्रीज है उहनां दे विच बड़ी ज्यादा मात्रा दे विच वैकेंसियां निकलदियां ने
1: अच्छा जी,
0: आईटीआई होल्डर्स दे लई, तां ओहदे लई इह बच्चे जिहड़े आ अप्लाई कर सकदे हैं। इस दी मोरओवर काफी जिहड़ी इमीग्रेशन जिहड़ियां कंपनीज ने ओह कम भी करदियां ने, जिहड़े के कह दिंदे आ कि ओह डायरेक्ट वर्किंग वीजा जिहड़ा ओह मंगवा के दिंदे हैं, और इहदे विच कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आंदा बच्चे दा,
1: अच्छा
0: तकरीबन
1: जी,
0: तुसीं लगा लो 50 तो 60 हजार या 70 हजार तक दा खर्चा आ जांदा होगा बच्चे दा,
1: अच्छा जी,
0: ते गल्फ कंट्रीज च जाण लई बच्चे नूं मोरओवर जेड़ी आईलेट्स वगैरह है ओह भी करन दी जरूरत नहीं पैंदी हैगी।
1: अच्छा जी, फिर उत्थे आमदन किन्नी
0: हाँ जी
1: पैंदी है इहनां
0: आमदन इहनां दी काफी हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि इहनां नूं किद्दां दी कंपनी दे विच हायर किया जा रहा है।
1: दी? अच्छा
0: आमदन
1: जी,
0: दे नाल नाल एक होर जेड़ी चीज एड अप हो जाती है उत्थे जाके, वो है कि उत्थे जाके बच्चों का जेड़ा प्रोग्रेस है
1: हाँ
0: वो
1: जी,
0: काफी तेजी नाल हो जाती है, जो घट आमदन से भी शुरुआत करते हैं तो वो घट्टो घट 6 महीने के विच उन्हों का काफी अच्छा पैकेज बन जाता है।
1: अच्छा जी,
0: ते इस तो इलावा अगर बच्चे चाहन तो वो वेस्टर्न कंट्रीज हो गया जेड़ा मतलब ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा दे बड़ा बच्चे जानते हैं कि असं उत्थे जाना है, तो
1: हाँ
0: ओदे
1: जी,
0: लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई तो बाद। ते
1: उत्थे वर्क परमिट ते जाणगे

प्रोग्राम कभी दरबार दे विच हरवंश सिंह वालों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे। प्यारे श्रोतियो अज 25 अक्टूबर 2020 दिन एतवार है, शाम के 5 बजते हैं ते हुण साडा 27वां कवि दरबार शुरू होने जा रहा है। ते इस कवि दरबार का आगाज करने लई मैं पटियाला तो शायरा ते गायिका निर्मला गर्ग जी नूं सदा देण जा रहा हां कि वो एक रचना लेके हाजिर होण। ते इस बार उन्होंने साडी फरमाइश दे उत्ते पंजाबी कवित्री सलीम मंड जी का एक गीत तैयार किया है। आस करते हैं कि तुसी पसंद करोगे। निर्मला गर्ग जी, थोड़ा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है।

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

जिंद वादियां चे डुब गई जे समतरी जांदे ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, ओ अपने परछावे तो

जे डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई।